दुर्गाए नमः। ॐ ह्रीं दुर्गाए नमः। ॐ ह्रीं दुर्गाए। ॐ ह्रीं दुर्गाए नमः। ॐ ह्रीं दुर्गाए नमः। ॐ ह्रीं दुर्गाए। ॐ ह्रीं दुर्गाए। ॐ ह्रीं दुर्गाए नमः। ॐ ह्रीं दुर्गाए नमः। ॐ ह्रीं दुर्गाए नमः।